0: समुदायको लागि सामुदायिक रेडियो जलजला एफएम 96.4 मेगाहर्ज।
1: मेरो लागि मायुका लागि त सुनसरी गाउँपालिका योमी मस्तक जरुरी सूचना जुहो बेला खिमरिदे गरम ओगोतिरी जेऊ बेला सुनो फुरी कता ओचुदुरी जेऊ आउ बेला क वन जंगल ल मे लागिने मस्त ज सम्भावना पाए आउ ये गिनी प्राकृतिक सम्पदा र सक्षेप्त ज सक्षम नारी वातावरण मिलेने ल खेपा असर केने रि उमुल र थङने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज तानाले भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकिने सुनो नाखा नामे ल मे लागिने सज जिनी गिनी लापरवाही सुनो चाउसो खेलगेमा दुख जिन्दगी कोठे ल मेलागी नाते जन धने मी खेपा छिटी ताउ दुबो खोकाई
2: गेचो छालियाला बन्न मेलागी ने पुरा रङ्गे नौ पुराले चौसो खेल गिरी
1: वन जंगल सग मेरा आदिमी बानी एमएल एमए ओ छछानेला लिउ सोतर पोतर राले पार जगे रहते
2: सलाई लाइटर सियाउला मे सचाउने चीज राले जबाङजा र यामा देने पोल गेने या पिचौ चीज र रहिदे वन जंगल याले के भाबा या
1: पिकनिक वनभोज बाको मे सचाउसु छिनि मेले चाउसु सैदे कि खनाले वन जंगल ओ छछानि दैके बारीको चुरोट विधि ओरे बने कोबा जेंगे माछि
2: नानथार नामलो लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बनि हो नि हालले च अनुगमन दिने व्यवस्था चाउसन गिदिए
1: गेसो छानेला खोरेल चाउसी पोदिए होइदिदे तरिम गाई गेजो नेके लाइजु अब नजिरे बनाई गेम येल गेजो नेके मालागे औले नायो के नाइदिए
2: वन जंगल स जुलिसियो गेम बारी ल बाली नाली कुचिला चुली यात्रा र सताउसु छिनि ने चाउसो सहिले के खेले या
1: वन जंगल नेला दिगे माइये मेवला दिकिनि पार जना खरनाम लारे मिदिदे बनाई सानो ज नेके छैये
2: बतास उचलिजु बेला त जिजिम के कोटल नेके सताकिनि हेनो खेम छिनि ने चाउसो के छैये
1: मेला दिने निताई गे मने के बचिए सुनो अरुले मने के बचैया
2: के छ छामला पोया मेला गियो किसन किनि गे छोटा ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सहज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका उनी कार्यालय खबर गिरिए
1: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा